रोता हुआ है मेरे पास, कहते हैं मेरी जिंदगी की कमी मेरे पास है 40,000 रियाल, मैं लुकमग निकलना चाहता हूं, मुझे महसूस होता है यहां पे अटकते हैं महसूस होता है, मेरा इलाज करो। मेरे भाई एक लुकमा खाने के लिए वो 40,000 देने के लिए तैयार है। हम कितने लुकमे दिन में खाते हैं और कितना पैसा देते हैं? अल्लाह की अल्लाह का अगर महज रहमत ना होती तो अल्लाह हम इस दुनिया में रहने के लायक भी ना होते। मैदे में गया, अब उसका हाजमा का सिस्टम शुरू हो गया। ये हाजमा कैसे होगा? एसिड है, एंजाइम्स हैं, मुख्तलिफ चीजें हैं, गोश्त। अभी माशाल्लाह बकरीद से हम आए हैं, वैसे बकरीद कहते हैं हम लोग, गाय और ऊंट का क्या कसूर है बेचारे का? गाय ईद, ऊंट ईद क्यों नहीं कहते? हा? नहीं सही बात है, बकरीद कहते हैं ना, फिर गाय तो नाराज हो गया ना, उनका नाम नहीं लेता कोई, इसलिए कि बकरे ज्यादा जिबा किए जाते हैं और गाय ऊंट कम जिबा किए जाते हैं, इसे कहते हैं तकलीब। बहरहाल अब गौर करें, ऊंट का गोश्त सख्त होता है, हमने वो भी खा लिया और मैदे बिल्कुल नरम है। ऊंट का सख्त गोश्त तो हजम हो गया और जो मैदा नरम है वो हजम नहीं होता, ये कैसे हो सकता है? क्या ख्याल है? मैदा पत्थर का नहीं बना हुआ, मैदा जो है नाजुक गोश्त का टुकड़ा है, गोश्त है। सख्त ऊंट का गोश्त हजम हो गया है लेकिन ये मैदा हजम क्यों नहीं होता? इस अल्लाह ताला की रहमत का तकाजा है, अल्लाह ताला की रहमत का नजारा है। फिर आंतों से गुजरना, फिर आंतों से खून में आना, ये खुराक। पता हम चलते फिरते कैसे, हमारी तवानाई, गाड़ी चलते पेट्रोल पे ऐसा है ना, हम चलते हैं कहां से तवानाई आती है? यही खुराक जो हम खा रहे हैं ये जिस्म में जाके ग्लूकोज बनती है और ग्लूकोज जलता है ऑक्सीजन से, तब एनर्जी मिलती है, तब हम हरकत करते हैं। ऑक्सीजन आती है सांस के जरिए से, ग्लूकोज आता है खुराक के जरिए से। हमारा बस इतना है, हमारा काम क्या है कि हमने एक लुकमा जो मुंह में डालना है उन निगलना है बस। अब उसे ग्लूकोज तक कौन पहुंचाता है, फिर ऑक्सीजन कैसे आती है और फिर एक एक खलीये तक इस ग्लूकोज को और ऑक्सीजन को पहुंचाना किसका काम है? एक एक खलीया। हम तो अपना पेट, बच्चों का पेट मुश्किल से भरना जानते हैं, बिलियंस ऑफ सेल्स हैं जिस्म के अंदर, बिलियंस ये खलीये जो होते हैं इंसान जिस्म के अंदर, इनकी गिजा गलत हमारे सुपुर्द कर देता तो हम क्या करते? तो जो मुश्किल काम था अल्लाह अपने जिम्मे ले लिया, मेरा बंदा परेशान ना हो, और जो आसान काम था हमारे जिम्मे दे दिया, वो भी हमारे लिए मुश्किल है और तब भी हमने हराम खाया, अब रब को नाराज किया है। देखिए फिर भी अल्लाह ताला अपने निजाम को तब्दील नहीं किया। काफिर का भी वही सिस्टम है जो मुसलमान का सिस्टम है, जो अल्लाह ने अपने जिम्मे ले लिया वो ले लिया है, हिसाब होगा हिसाब के दिन। तकलीफें बीमारियां काफिर के बाद मुसलमान को भी होती, इम्तिहान है। दिल का धड़कना, सांस का लेना, जिस्म के अंदर मुख्तलिफ सिस्टम निजाम को पैदा करना, अल्लाह ताला रहमत का तक नजारा है। खून को देख, इंसान का खून का रंग क्या रंग है? सुर्ख है, पक्की बात है, परेशान क्यों हो? खून सुर्खी होता है ना। अच्छा, अगर खून का रंग यह होता पानी वाला तो इंसान जिंदा ना रह सकता, पता है? अगर खून बेरंग होता तो पता है क्या, कि कहीं से खून निकल रहा है इंसान को? खून निकला, कपड़े पे लगा, सूख गया। अब ये पानी की बूंद है या क्या लगे को पता तो नहीं है ना। और सुर्ख रंग जो है ये इमरजेंसी अलार्म का रंग होता है, हमेशा याद रखें। ये जो गाड़ियों में पीछे जो सुर्ख कलर है, इशारा सुर्ख है, ये जो सुर्ख का कहां से आएंगे? ये इंसान के खून को देख के आए, सारा सिस्टम निजाम जो बने दुनिया में ये इंसान के खून को देख ही हुआ है कि सुर्ख रंग जो है ये अलार्म है। जो ही खून निकलते इंसान अलर्ट हो जाता है, भाई अब खून निकल रहा है, इसके रोकथाम के लिए कोई इकदाम करना चाहिए। तो अल्लाह की रहमत है कि खून का रंग सुर्ख है। अगर पानी का रंग सुर्ख होता तो इसे कौन पीता? तो जो जिसे होना चाहिए था अल्लाह ताला उसे वैसे रखा, बेहतरीन तरीके से।

कि अगर कभी जिदाल करना भी पड़ जाए तो नरमी होती है इल्म, नरमी और उसमें सब्र होता है। देख ले मिसाल के तौर पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो मुनाजरे हैं, यानी एक से ज़्यादा तीन तक मुनाजरे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। एक नमरूद के साथ मुनाजरा था, नमरूद ने क्या कहा, मैं रब हूँ, क्यों रब हूँ, जिंदा मुर्दा करता हूँ, दो कैद खाने में से दो लोगों को बुला लिया जिन पर सज़ा मौत मुकर्रर कर दी गई थी, एक को सज़ा मौत सुना दी कत्ल कर दिया और दूसरे को रिहा कर दिया, देखो मैंने ज़िंदगी दे तो मौत भी देता हूँ। कुछ जिदाल किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम रब से निकाल के दिखाना, फबूहित अल्लज़ी कफर, लाजवाब हो गया। और बुत परस्तों के जो बुतों को तोड़ दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, जिसमें सबसे बड़ा बुत था जो कुल्हाड़ी तो उसके कंधे पर लटका दी, वो बाकी सारे तोड़ दिए, सामने लाया गया, अभी पूछो किसने किसने तोड़ा बुतों को, क्या जवाब होना चाहिए था, उससे पूछो जो उस बड़ा जो सरदार खड़ा है, जो सबसे बड़ा तुम्हारा महबूद है, उनसे पूछो, मैं तो कहता इसने तोड़ा है क्योंकि सबूत हथियार उसी के कंधे पे, मेरे हाथ में तो नहीं है। क्या जवाब था उनका, बात तो लिया था, बात तो ठीक है कि अगर वाकई ये हमारा महबूद सच्चा होता, यह कुछ करने के काबिल होता तो अपना दिफा करता या और इनका दिफा कर लेता, ये तो हथियार से कंधे पे खड़ा हुआ है, लेकिन शैतान ने फिर बहकाया है कि ये तो जानता है कि बोलते नहीं है, तुम भी जानते हो, बोल नहीं सकते, कुछ नहीं करते, बस इनकी इबादत करते रहो, ये मत पूछा करो क्यों करते हैं। फिर वापस पलटे और शैतान जो है उनको वसवसा दिया है। तो मुनाज़र मुख्तसर से होते हैं, टू द पॉइंट बात होती है, कोई गाली गलोच नहीं, कोई अदब या अखलाक के दायरे से बाहर नहीं निकलते, अंदर रह के बात होती है। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मिसाल लेते हैं, आपको याद होगा कि मुस्नद अहमद में मरूफ किस्सा है, तबरानी में भी है और अल्बानी सही फरमाते हैं, उस जवान का किस्सा जिसने ये अर्ज़ की थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए मुझे जना की इजाज़त दी जाए, मेरे जना को यानी जायज़ करार दे दिया जाए। जवान था, शहवत उस पर गालिब थी, उसके लिए सब तो आसान था शरीयत पे अमल करना, लेकिन जना से वो रुक नहीं सकता था। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, तो जो मजलिस में जो सहाबा मौजूद थे, बाज़ ने तो फौरन उसे रोक दिया और जजर कर दिया, यानी सख्ती से पेश आए, वो कहो रुको तुम क्या कह रहे हो। फ़क़ाल अल्लाह ताला के प्यार पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, उदनो ज़रा करीब आओ, ज़रा अदब देखें और प्यार देखें, आप पर नरमी देखें, इल्म देखें, सुभान अल्लाह, उदनो करीब आओ। फ़दन अमिन हो करीबन, करीब आके बैठ गए। क़ाला अल्लाह ताला के प्यार पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतुहिब्बु ली उम्मिक, क्या अपनी माँ को तुम पसंद करते हो इस जना को। क़ाला अल्लाह वल्लाही जअलनल्लाहु फिदाअका, अल्लाह ताला मुझ पर यानी आपको कुर्बान कर दे, हर किसी में अपने माँ के लिए पसंद नहीं करता हूँ। قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم, लोग भी अपनी माँ के लिए पसंद नहीं करते। قال أفتحبه لابنتك, क्या अपने बेटे के लिए पसंद करते हो तुम जना को। قال لا والله يا رسول الله جعلنا الله فداك, قال ولا الناس يحبونه لبناتهم, लोग अपने बेटों के लिए पसंद नहीं करते। قال أفتحب لأختك, अपनी बहन के लिए पसंद करते हो। قال لا والله جعل الله فداك, قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم, बहनों को कोई पसंद नहीं करता लोगों में से। قال أفتحب لعمتك, قال لا والله جعل الله فداك, قال ولا الناس يحبون لعماتهم, फुफियों को भी कोई पसंद नहीं करता। قال أفتحب لخالتك, अपनी खाले के लिए पसंद करते हो। قال لا والله جعل الله فداك, قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم, लोग भी अपने खालों को पसंद नहीं करते। हर तरफ से जो भी औरत का रिश्ता इस वक्त आप सोच सकते हैं, महारी में से क्या है, माँ है, बेटी है, बहन है, फूफी है, खाला है, ये पांच है ना, आप अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लम ने सबका जिक्र कर दिया है। قال فوضع يده عليه, आप सल्लम ने सीने पर हाथ रखा। قال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه, दुआ फरमाई, اللهم